0: TFM 89. It's 7:30 AM.
1: We're playing your song.
2: This show is brought to you by Jazz
3: City FM 89.
2: This show is brought to you by.
4: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएस के पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
5: You're listening to City FM 89.
6: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं.
7: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold, and hard to miss.
8: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है, और स्पेस भी काफी है.
7: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats, and a dual-pane sunroof for a premium experience.
8: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
7: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ. इसमें 8 seats का option है.
8: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
7: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
0: डोंट एडजस्ट योर डायल.
3: दिस इज
0: सिटी एफएम 89. यू आर लिसनिंग टू द ब्रेकफास्ट शो विद शर्मीन.

0: effect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM
1: 89.
2: This show is brought to you by.
4: Foran apne doctor se shingles ke baare mein baat karein. Khatre mein ghire har fard ko zaruri nahi shingles ho. Ye public service message GSK Pakistan ki janib se hai. Mazeed malumat ke liye apne doctor se rujoo karein.
5: City FM 89.
6: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
7: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
8: ऑफ कोर्स, इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
9: Bahar se to grand hai, andar bhi premium feel aa rahi hai. Aur space bhi kafi hai.
8: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
9: Achhi hai, par mujhe to 8-seater chahiye thi.
8: Ji Begum Saiba, aapke liye Palisade Smart order kar deta hoon. Isme 8 seats ka option hai.
9: Yani family ke liye bhi perfect aur no compromise on looks. Ab samajh aaya, sab kyun dekh rahe the?
8: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
10: Chicken pox yaad hai, ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. कभी सोचा भी नहीं था। तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें।
4: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें। खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो। ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है। मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें।
11: इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती।
12: सेंट इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूं?
13: कंट्रोल फॉर M210210 मूव करेंगे।
11: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है। हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है। ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है। सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी, खिदमत में सबसे आगे सिंध।
14: यू आर लिसनिंग टू सिटी एफएम 89। वी आर
15: प्लेइंग योर सॉन्ग।
16: यू आर लिसनिंग टू द ब्रेकफास्ट शो विद शर्मीन।

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
4: City FM
1: 89.
3: This show is brought to you by.
5: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
6: City FM 89.
7: Step Schools سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. Step Schools دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
8: Shaukat Khanam, Lahore aur Peshawar ke baad, aapki ek aur donation.
9: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeer.
10: Aaj hi donate karne ke liye 0800-111-555 par call karein ya hamari website www.shaukatkhanam.org.pk visit karein.
11: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ यही नहीं फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G
12: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं
13: ऑफ कोर्स इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड Grand, bold and hard to miss.
14: Bahar se to grand hai, andar bhi premium feel aa rahi hai. Aur space bhi kaafi hai.
13: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
14: Achhi hai, par mujhe to 8-seater chahiye thi.
13: Ji, Begum Sahiba, aapke liye Palisade Smart order kar deta hoon. Isme 8 seats ka option hai.
14: Yani family ke liye bhi perfect aur no compromise on looks. Ab samajh aaya, sab kyun dekh rahe the.
13: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
15: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
16: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: Groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: You're listening to City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: This show is brought to you by.
6: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएस के पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
7: City FM 89.
8: Trending today.
9: The BBC is officially bringing Top Gear back to television screens. The storied program paused production in 2022 following a crash involving presenter Andrew Flintoff. Securing the right dynamic for the camera has historically proven difficult for the network following the legendary run of Jeremy Clarkson, Richard Hammond, and James May. The previous lineup of Flintoff, Paddy, and Chris Harris managed to find a solid rhythm before the tragedy cut their tenure short. No concrete timeline has been established yet on when the series will release.
10: Step School से foundation हो strong. Step Schools दे रहा है modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
11: Shaukat Khanam, Lahore और Peshawar के बाद आपकी एक और donation.
12: Shaukat Khanam, Karachi की तकलीफ.
13: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
14: जहां पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पांच दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
15: चिकन पॉक्स याद है, ये शिंगल्स बन के वापस आ सकता है. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
6: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएस के पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
16: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं.
17: ऑफ कोर्स, इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड. ग्रैंड, बोल्ड एंड हार्ड टू मिस.
18: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
17: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
18: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
17: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ. इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है.
18: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
17: Experience the all new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
2: City FM 89. We're playing your song. Wow, wow, wow, wow.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: चिकन पॉक्स याद है, ये शिंगल्स बन के वापस आ सकता है, कभी सोचा भी नहीं था। तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें।
4: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें। खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो। ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है। मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें।
5: We are
2: City FM 89.
6: Pakistan, for the first time, experience Ali Noor in an exclusive live concert series across Pakistan. From the timeless anthems that defined a generation to the music that continues to inspire millions. The Surrender Tour is an intimate celebration of Ali Noor's extraordinary musical journey. Expect an unforgettable night featuring iconic classics, powerful storytelling, and an immersive live performance unlike any other. Happening on 27th September at the Arts Council Karachi. Get your tickets from Ticketwala. City FM 89 exclusive radio partners.
5: We are
2: City FM 89.
0: You're listening to
2: Non-Stop Hits.
0: City FM 89,
7: your drive-along companion.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 5 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89, we're playing your song.
1: Coming up next,
5: The Rush Hour with ABD.
1: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
6: City FM 89.
7: Trending today.
8: The BBC is officially bringing Top Gear back to television screens. The storied program paused production in 2022 following a crash involving presenter Andrew Flintoff. Securing the right dynamic for the camera has historically proven difficult for the network following the legendary run of Jeremy Clarkson, Richard Hammond, and James May. The previous lineup of Flintoff, Paddy, and Chris Harris managed to find a solid rhythm before the tragedy cut their tenure short. No concrete timeline has been established yet on when the series will release.
6: You're listening to City FM 89.
9: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
10: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold, and hard to miss.
9: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है, और space भी काफी है।
10: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats, and a dual-pane sunroof for a premium experience.
9: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
10: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ। इसमें 8 seats का option है।
9: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
10: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
11: कॉफी का मूड है तो डिस्काउंट भी होना चाहिए। अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाएं अप

0: perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 5:30 PM.
3: City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: कॉफी का मूड है तो डिस्काउंट भी होना चाहिए. अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाए अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे. टिम हॉर्टन्स, कॉफी मिस्ट्री, थर्ड कल्चर, सेकंड कप, ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान. तो सिप करें, सेव करें और एंजॉय करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
6: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
7: शौकत खानम, कराची की तकमील.
8: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
9: सब मुड़ के देख रहे हैं.
10: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
11: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
10: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
11: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
10: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ. इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है.
11: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
10: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade Hybrid एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
12: चिकन पॉक्स याद है? ये शिंगल्स बन के वापस आ सकता है, कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
13: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
1: सिटी एफएम 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
0: यू आर लिसनिंग टू
2: द रश आवर विद एबीडी.
14: Welcome back to The Rasha. I'm your host, ABD, and we are going through a lot of fun content today. But first off, I want to start off with a recommendation list. So it's called, we're going to be doing audiobooks essentially this time around, which is different. You know, we always do TV shows and all, but I feel like this time it should be something, you know, maybe that you can listen to sometimes while driving. If you are not driving at The Rasha time, at The Rasha, I hope you listen to me. And also, if you're just like, you know, working out, working around the house, doing some office stuff, whatever it is, and you want something in the background. So first up, we have Atomic Habits by James Clear. It's a very pragmatic, extremely motivating and endlessly practical self-improvement. And I, for one, and I know a lot of people don't, but I love self-improvement books. I just think they're so nice. They make you feel a lot better and they help you with your life overall in general. It clearly breaks down how the tiny 1% daily changes actually compound into massive life transformations over the course of a certain period of time. It's packed with actionable advice on breaking bad loops and building lasting systems. It is narrated directly by the author in a calm, clear tone, and you cannot want anything more. You know, if the author is narrating it to you, it does not get better than that. I'm going to cut to a break, guys, play some music for you. When we come back, we will be going through more audiobooks.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
4: कॉफी का मूड है तो डिस्काउंट भी होना चाहिए. अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाएं अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे. टिम हॉर्टन्स, कॉफी मिस्ट्री, थर्ड कल्चर, सेकंड कप, ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान. तो सिप करें, सेव करें और एंजॉय करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
5: चिकन पॉक्स याद है? ये शिंगल्स बन के वापस आ सकता है, कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
6: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएस के पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
7: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं.
8: ऑफ कोर्स, इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड. ग्रैंड, बोल्ड एंड हार्ड टू मिस.
9: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है. Or space bhi kaafi hai.
8: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
9: Achhi hai, par mujhe to 8-seater chahiye thi.
8: Ji Begum Saiba, aapke liye Palisade Smart order kar deta hu. Isme 8 seats ka option hai.
9: Yani family ke liye bhi perfect aur no compromise on looks. Ab samajh aaya. सब क्यों देख रहे थे?
8: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
10: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो? तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला. मिलेगा कैसे? बस Jazz Experience Center या Jazz E-Store पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला Jazz 5G.
11: खैर तो है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
12: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है. आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है.
11: बैंक जाने की क्या जरूरत है? इन्वेस्टपार्क है ना?
12: इन्वेस्टपार्क?
13: जी हाँ, इन्वेस्टपार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें. ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार. इन्वेस्टपार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें.
12: इन्वेस्टपार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा.
3: City FM 89. We're playing your song. Wow, wow, wow, wow.
1: You're listening to The Rush Hour with ABD.
14: Hey guys, welcome back to The Rush Hour. I'm your host ABD and we are going to what is happening in your city. So I have up for you guys EUFF Pakistan 2026. And you might be wondering, what is EUFF? Well, that's European Union Film Festival. This is the fifth European Film Festival in Pakistan. It is presented by the delegation of the European Union to Pakistan. It is curated by Ulum Polo Media. Now, guys, you know we love film on the show. We talk about different films. We talk about different methods. We spoke about IMAX. We just love it. So the European Film Festival launched in Pakistan in 2021 and has grown into one of the country's most anticipated annual cultural events. Over the years, the festival has brought the magic of European cinema to audiences. Get ready for it. Gilgit, Quetta, Peshawar, Gujarat, Faisalabad, Multan, Lahore, Karachi and Islamabad. So essentially all over the country, they are spreading the magic of film. The European Film Festival is more than just a showcase of films. They've created a platform for creative dialogue, cultural understanding and shared celebration between Europe and Pakistan. And essentially, this started off as a single day, 4-5 hour screening and has now evolved edition by edition into a full festival experience. And 2026 marks its fifth year with the widest partner network the festival has ever assembled, which is amazing. So this year it is traveling to two more places. We had Islamabad earlier, but that is done. Now we have Sialkot at the Government College Women University and The Grid by BLCK. Yes, it's a cafe on the 16th and 17th of September. And in Jamshoro, Hyderabad from the 29th to the 30th of September at SABS University. Make sure you guys go, man. Learning from film, there's nothing like it. It's a lot of fun. Take care and enjoy.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
0: Our TikTok will have you scrolling for days.
3: Follow us at City FM 89
0: on TikTok.
4: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G
1: City FM 89
3: Your drive-along companion.
1: You're listening to
0: Future Sounds.
5: Future Sounds. Future Sounds.

0: 89.
1: जहां पांच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
0: City 89.
2: You're listening to
3: Future Sounds.
2: Future Sounds.
4: Vibe with us, your music.
5: Discovery for the latest jams and hidden gems.
6: Rock that, don't stop, rock that, don't stop, stop, stop, stop.
7: Keep the breath of that alkaline air.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
0: You're listening to
2: Future Sounds. Future Sounds.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G.
2: City FM 89. The old commute is broken. We're just here to help you override it.
0: ABD. The rush hour. 5 to 8 p.m.
3: A new era begins.
4: City FM 89.
5: On the dial. You're listening to
6: Future Sounds.
7: Future Sounds.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
3: Follow us at City FM 89 on TikTok.
4: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G। City FM 89.

0: It's 10:30 p.m.
1: City FM 89.
2: कॉफी का मूड है तो डिस्काउंट भी होना चाहिए. अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाएं अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे. टिम हॉर्टन्स, कॉफी मिस्ट्री, थर्ड कल्चर, सेकंड कप, ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान. तो सिप करें, सेव करें और एंजॉय करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
3: खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
4: सिटी एफएम 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
5: You're listening to
6: Non-Stop Hits.
7: No talk.
8: Just you
7: and the music.
8: Back to back
7: starts now.